0: 老参加人呢，按照供应地被拖了人呢，有情的雪儿这边生着空开人呢，人数超大孤僻在雨地吃不他。刚们这里去准这边生着困难人个人呢，疙瘩他，家身边到孤僻山头见那雄鹰，所有的男孩这边生着空开人呢，给咱受不得了，俺们家出穷山去等着人，弟弟呢出去吃别推荐人别。可别人呢那么给吃不用的呢三个送下的皮炎人给咱看到这用的呢托见那需要人过来看送死的呢下托见那老母提前呢三周空气四百天都看到这对那就雄鹰了另一公干啥
1: 天阳就说了接不上了接不上了天阳就说了这里小伙子的你真估计的学问那把嗯小伙子来看的时候我你们进度三人来看我教育了
0: 林森他在哪老你们听说了我跟心里在哪时候呢这一呢这就是别区别路线苦涩的没有了涩的所有平年呢
1: 老等到这里给你真都用天阳就走了天不上了不知那么多几都几几位都几里安他弄的安都用不到安那个都有空中靠近明白那么多不住अने ट्यूजिन से सीधे ले दा किमदान किमदान नाम से नियम तो ट्यूजी तो वो यों दे तेजी मिंडु शुरू किया ला
0: ना ना
1: अने तो गे तो था ने नों दा दिया ट्यूजी ले रे अन नों मंगो तो या यों दे तेजी मिंडु शुरू किया ला
0: तीसे ना ना
1: अंगन दिल्ली जना शुंगे ओंग बच्चें जेंदा छे ये कुन्ये दा चेवा चेन्ये दा सनी यों दा कांगा भी किया ला
0: ना ना
1: अन्ये तो कुसंग युटेम भी现在的中国生计来拼嘛，现在俺们这小家伙那个，俺们山东的，俺们这朋友都有什么来给他去呗？俺果然里呀，牛呢，吃肉的，你们都爱。现在冬天的，明晚那么就吃不休息，俺空个，但是俺这行动忙着做了，他还得顶得休息，俺呢，刚才说那俺们不过见，俺们不过见到有那见到了，但我没事别别的。अने ती न्यामबला समान्यों कोंगबी लुशे इनार कोशे ती शिंसां पक्वे ओलो मरुवा कोंगे नोक्स सोचो नाबा तोची शुवी क्या ला
0: नो नो निसे
1: अने शे तंखें दा अने मांगजो नाबो तुभा तु शिमु शिवे थाने अने जंजा दा अने लिजिशम नाना कुरांगी लोक पुते वे ती तुरिम नाला जि� les gens les tout dans le chez tes chez ça tu as comme ça c'est sembe tiné plus que les gens les tout yom bisho
0: lesse non non ta chena
1: on me man number de jibe number de tout petit jibe tu dis tes chez les sous quand là
0: lesse
1: lo on les gens ni kudani so chou a
0: lo kusu nangola
1: lo kusu tu jana a
0: ta chena lo chidin chawo
1: lesse gen yang tu la je ma sala